0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए

0: लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना. ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है.
1: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है.
0: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत.
0: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है.
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की. उसका नाम था काना हराडा.
0: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है.
0: जी
1: इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं. लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी. आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे. सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे.
0: अच्छा, तो ये बात है.
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल. स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी. ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूरदराज इलाका है. धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे. कभी कभी तो 3-4 यात्री ही हुआ करते थे.
0: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई. लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की. वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी.
0: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है. सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है. शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
0: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है.
1: और फिर ट्रेन आती है.
0: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है.
1: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
0: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही.
1: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
0: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए. कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है.
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी. मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
0: जी,
1: वे एक भविष्य है. तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली.
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई.
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए.
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए.
0: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो.
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
0: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं.
1: जी बिल्कुल. जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
0: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है.
1: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न. प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए.
0: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी, और उसे कब बंद कर दिया गया?
1: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं. तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की. सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल.
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है.
1: माला की चांदी की पायल.
2: माला बिल्ली को डराती है. वो अपनी नानी को

0: वो डराती है।
1: अरे माला तू,
0: वो अपने छोटे भाई को डराती।
2: धाप!
0: वो डाकिये को डराती।
3: बहन जी, डाकिया!
0: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
1: माला, यह तुम्हारे लिए है।
0: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
5: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले

0: जादुई डिब्बा भी कहते थे।
1: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
0: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
1: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
2: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
3: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
2: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
3: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
2: ना जाने क्या होगा इसका।
3: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
3: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
0: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे कैसे?
5: जोर से मारना।
4: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
4: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
6: कैसा प्रयोग?
4: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
4: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
4: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
3: अच्छा।
4: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं।
4: फिर जाओ ना।

0: हाँ हाँ ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ। हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
1: अरे वाह, अरे वाह, क्या
0: बात है! वाह, क्या क्या बात है!
1: अरे ये तो जादू की तरह लगता है।
2: वाह, क्या बात है!
1: अरे वाह,
0: सिग्नल मिला?
1: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत।
3: शाबाश मार्कोनी,
0: बधाई
3: हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
5: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: वाह, रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह।
0: रोहन, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह।
2: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
3: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
2: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
3: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक, विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज, एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
2: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
4: अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डैक की ओर भागो।
5: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
0: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरल्ड।
5: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प, लाइट सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
5: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नाव को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
6: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
2: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
3: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
2: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।

0: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
1: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए.
2: आपने तो कमाल ही कर दिया. कितना अद्भुत है आपका रेडियो. वाह वाह वाह वाह वाह.
3: सच में कमाल है. बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो
4: विश्वास नहीं होता.
3: विश्वास
1: नहीं होता. मिस्टर मार्कोनी
5: जी.
1: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
5: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ.
1: गुड गुड.
5: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा.
1: बिल्कुल.
5: धन्यवाद. धन्यवाद.

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमरीश जी.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: थैंक यू अमरीश. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा. सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ. भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए. सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई.

0: And before we begin the program and give you details of the top story, here's a disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा. इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले. हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points or over 0.5% to close at 76,153. The Nifty fell 41 points or 0.2% to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे. दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%, housing finance and capital goods gained around 1%, and mid-small private banks added 0.5%.

0: 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%. Consumer durables fell 0.6% and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced. Shares of 1,778 companies declined and shares of 223 companies remained unchanged.
1: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ. पुनीत जी, जैसा बाजार का हाल हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है, कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
2: तो अम्बरीश जी, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहाँ पर सेंसेक्स में काफ़ी भारी गिरावट है लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी. और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर हमने अच्छी बढ़त देखी है. स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफ़ी मिला जुला सा बाजार है. और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे. तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती. दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा. पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs की जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है. थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है सबसे बड़ी बात. और दूसरा है कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए. और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है. $127 बिलियन, पहले अनुमान आया था $20 बिलियन का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे $50 बिलियन के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई. एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन इतने ज्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि RBI को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी. उसके बावजूद $127 बिलियन जो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है वो भारत में आए, तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमको बाजारों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए.
1: पुनीत जी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जल्दी इस स्कीम को बंद किया गया और हम देख रहे हैं रुपए में जो मजबूती आई है, तो क्या कारण था कि अगर ज्यादा इनफ्लो आ जाता तो क्या उससे प्रॉब्लम होने वाली?
2: नहीं, देखिए दो प्रॉब्लम इसकी होती है. पहली प्रॉब्लम ये है कि जो आप जिस स्कीम के तहत ये लेकर आ रहे हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट RBI के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि RBI ने जो एक्सचेंज का जो रिस्क है, जो प्रीमियम है, वो RBI ने लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड्स RBI को उसमें ज्यादा पड़ेगी. थोड़ा आप देखेंगे जो आने वाला समय है RBI की बैलेंस शीट पे इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा. दूसरा, जो ये $130 बिलियन का इन्फ्लो हुआ है, इस वजह से आज ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको कि बैंकिंग सिस्टम में 10 लाख करोड़ रुपए सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है. और जो ओवरनाइट रेट है, जो ओवरनाइट बैंकिंग रेट कहलाता है, ओवरनाइट बैंकिंग रेट रिजर्व बैंक के एक टारगेट रेट होता है कि रिजर्व बैंक एक राइट रेट मेंटेन करना चाहता है, उस रेट के नीचे आ गया है ओवरनाइट रेट. यानी बैंकों को ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, उनको जो पैसा सरप्लस बैंक में है वो डिप्लॉय इतनी फास्ट तो देखिए कर नहीं सकते. 10 लाख करोड़ रुपए आप इमीडिएटली आप उधार नहीं दे सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और वो बैंकों की ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है बैंक के ऊपर. बैंक ने ऊपर रेट पे बोरो किया हुआ है, 6.5% FCNRB में बैंक्स को रेट दिया है उन्होंने, तो इसका असर नेगेटिव पड़ता है कि ज्यादा पैसा भी और जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं उसका नुकसान होता है, और यही कारण है कि RBI ने ऐसा कदम उठाया है.
0: पुनीत, यू नो markets, of course, like we said, saw today, it's the fourth day that the markets, this week at least, that the markets have, you know, ended in red, closed in red. But this is not a one-off. We've been seeing this volatility for a few months now, over a period of time. Now, for those of the investors, for those people who do not have the appetite to invest in a stock market, who are risk-averse, at this moment, if they do not want to, you know, venture into the stock market, or if they are already in the stock market, but they are looking at other avenues, what are the other options, especially given the kind of geopolitical situation right now there is, what are the other options they have for investment?

0: electricity, inputs, labor, marketing, and regulatory requirements. Meanwhile, the HSBC India Composite PMI Output Index stood at 54.3 in August, unchanged from July, as faster growth in services offset a slowdown in manufacturing. Puneet, a lot of numbers we are seeing here, but what is, you know, the most important numbers, of course, is that the PMI Business Activity Index has risen to 54.3 in August from 53.3 in July. But as also I read in the, you know, next line, that it is still the second weakest since March 2022. How do you look at it?
1: So, Anubha, if you really look at it, so you can really look at it from different perspectives.
0: Okay.
1: One, of course, is the fact that the absolute number, if you look at the 53.3 below long-term average, means that there is some inherent underperformance vis-a-vis business activity.
0: Okay.
1: But when I look at it in context of the challenges that the economy has, so this was a very difficult period for Indian economy, where you had a war in West Asia, you have war in Europe, commodity prices have gone through the roof, inflationary pressures are there. The story itself mentions that the input cost pressures have really gone up. When I look at all this, it gives me a lot of satisfaction that our business activity continues to be robust.
0: Right.
1: It continues to expand.
0: Yeah.
1: Many other countries have seen huge challenges. And here I might mention the fact that China is facing a crisis in manufacturing.
0: Okay.
1: There is a lot of talk right now that China has to come out with a stimulus to boost its... And this is despite China having the highest possible exports, highest numbers of exports in the last many, many years. That means China's domestic economy is not doing well at all, because export numbers are very, very large. So clearly, I think, given these challenges and the context of the geopolitical difficulties we have, I think these numbers are pretty good. And the moment the inflation pressures go down, and I think the war sooner or later comes to an end, I think we'll do well.
0: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे.
2: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया. पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में, और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अगर इसको हम इस नज़रिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इस समझौते के क्या मायने?
1: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से. तो एक तरफ हम देखते हैं कि एफटीए हम यूके से साइन करते हैं, ईयू से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से साइन करते हैं. तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है. और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा भारत की प्रगति में. तो मुझे लगता है ये जो एक समझौता है उस लक्ष्य से वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा.
2: और एक और अच्छी खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत आधार देंगे. उन्होंने दुनिया भर में भारत

0: बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया। तो पुनी जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफ़ी विस्तार दे रहा है और जो अभी हमारी जीडीपी की फिगर्स आई है उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहें?
1: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है। और इसलिए ये जो बास्केट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और समझौता हूं आपको इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा। ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे, जो नंबर्स हैं उसमें 2-3-4 वर्ष लगेंगे फिर आप इसका असर देखिएगा।
0: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने वाला है।
1: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए और एक बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, क्वालिटी एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग। एड्रेसिंग द 6th Annual Convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew

0: mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for
1: us. So R&D is one area where we need to really work.
0: Absolutely, and I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
2: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा. पुनीत जी, आप क्या कहेंगे आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
0: देखिए, एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफी वॉलिटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहां पर काफी वॉलेटाइल वो रहा है. और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए. पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है. आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है.
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6-week highs after fresh U.S. strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
2: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 153,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 1.8% बढ़कर 232,533 रुपए प्रति किलोग्राम थी. पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज.
0: अमरीश जी, देखिए, जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में, यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है. काफी वॉलेटाइल है. परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई. ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा. तो पूरा एक वॉलेटिलिटी का माहौल या इंस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है, और उसी का ही रिफ्लेक्शन है. बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद.
1: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत, यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a you know volatility, but given the fact that we were earlier discussing our foreign exchange reserves are very comfortable, so it's a good news for us given the way the oil prices are moving.
0: So Anubha, oil prices of course are a matter of concern, and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now,
1: right.
0: And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
2: Puneet ji, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद अमरीश जी.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री पार्क दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत के विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, AI आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित EPF बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एक मुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केट प्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेया के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, AI और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए DNA जाँच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया.

0: संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, AI और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए DNA जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के आयोजनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever

0: நெஞ்சம் மறப்பதில்லை இதுவரை கேட்டோம். ஒழித்த பாடல் மதுமதி திரைப்படத்திற்காக மனோ பாடிய பாடல். இனி தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं. बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही.
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है. पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है.

0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS.

0: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். பண்டிட் விநாயக தோரே அவர்களின் பாடல் கேட்டீர்கள். பண்டிட் உலாஷ் பப்பத் அவர்களின் சந்தூர் இசை, அடுத்ததாக ஜெகதீத் சிங் அவர்களின் ஓக்கல் இசையை தொடர்ந்து செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்
1: சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क दावेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं. बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही.
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है. पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है.
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर, आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन का संघर्ष समाधान तेल खनिज या एल्यूमिनियम खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है. कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है. उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान कर

0: करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेज़बानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग की रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उप सचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाजू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। बैठक की तैयारियों के सिलसिले में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेज़बानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देशभर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श भी जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. ISRO said that the state-of-the-art Earth Observation Spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcome the launch of the India-Belgium Strategic Dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training.

0: இதுவரை பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் தேவிகாபுரம் டிஜி ரத்னம் அவர்களின் நாகஸ்வரை இசை கேட்டோம். மயிலை பி சி ராஜரத்னம் அவர்கள் தவிழ். இன்னும் சில நொடிகளில் டெல்லி ஏஞ்சல் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरियोकी नमाजू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा

0: आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओ ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The ISRO said the state-of-the-art Earth observation spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues related to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Vice President C.P. Radhakrishnan, who is also an ex-officio chancellor of Punjab University, will visit the university in Chandigarh today. He will inaugurate the